0: स्ट्रीट फाइंडर पर आप अगर जाकर अपना अकाउंट खोलेंगे तो ये सब आप खुद भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बस पैसा आता गया और उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इस बात पे उसको शाबाशी दूं या मैं क्या करूं।
1: पैर धो के पीने चाहिए ऐसे क्रेजी आइडिया के लिए, पैर धो के।
0: शायद वो भी कोई मांग रहा हो पीने के लिए, ब्वा गंदी जुराबे दे दो ब्वा।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere. Tum tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina dikh tagina

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: जगाती है कयामत कोई।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. जी हाँ, आज इस पावन दिन पर क्या हुआ अंतरा, क्या हुआ? सारे भाइयों की याद आ रही है, मुंह बोले वाले भाइयों की.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday.
1: हाँ जी हाँ जी, मेरी खबर कुछ ऐसी थी कि मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला रेनू का इस रक्षाबंधन मोड में मत शुरू करना. कैसे कैसे बोल पाऊंगी कि मैं किस किस के बारे में बात करने वाली हूँ? करो, किस किस के बारे में करो ना बात करो. सो वेल, कुछ ऐसा है कि आजकल की जो इतनी वायरल और ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, तो इस तूफान में हर कोई ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि कुछ तो ऐसा तूफानी कर जाएंगे कि लोग याद रखेंगे, कि मतलब बहुत सारे मिलियन व्यूज आ जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है. अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने सोचा होगा थोड़ा, जितना थोड़ा बहुत दिमाग अगर है भी तो उतना यूज करके, सफेद कलर की बॉयफ्रेंड की गाड़ी, ठीक है. दिस इज वन ऑफ दोस कार्स, इफ यू रिमेम्बर इंडिया में, वो जो पीछे वाली स्क्रीन होते हैं ना, उसमें लोग ये लड़के बड़ा बड़ा अपना नाम, ये ठाकुर लिखा हुआ है एकदम लाइक बोल्ड लेटर्स में, एंड लॉट ऑफ फनी थिंग्स आल्सो यू काइंड ऑफ गेट टू रीड एंड यू गेट इट. You kind of get it, कि भाई चलाने वाला तेरा भाई है, type of चीज़ें लिखी होती है. So, अब इन्होंने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड से 3400 पुचिया, खुद को नहीं, मतलब खुद को भी दिलाता तो मैं समझती कि यार मैं समझ सकती हूँ, गाड़ी को उसके लिपस्टिक भरे होठों से चुम्मिया दिलाई. वाह,
2: थर्टी फोर हंड्रेड,
1: फील ही अलग है यार इस इंसान की. अपने आप को राजेश खन्ना समझ रहा है. याद है राजेश खन्ना की गाड़ी के ऊपर सारी की सारी लड़कियां आके पुच्चियां देके चली जाती थी, एंड दैट गाय यूज्ड टू कम इन हिज कार, यूज्ड टू बी ऑल लव्ड एंड व्हाटएवर, कि यहां राजेश खन्ना ने हाथ लगाया है, यहां ये, यहां वो. ओह माय गॉड,
2: बट पुच्चियां भारी पड़ गई, चलान हो गया 5500 का.
1: And क्यों ऐसा क्यों, क्या jealous हो गया इंस्पेक्टर?
2: I have no idea. The comment section is so funny. सबसे टॉप में लिखा ही पूछा ही ये है, but what is the crime here, sir? किस बात का चलान है ये, किस बात का?
1: वो इस बात का होगा कि even front screen पर करा ली होंगी इसने. तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर को पूरा हक है भाई साहब, हक है. अगर आप देख नहीं सकते और अगर बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, एंड ऑल्सो ही इज कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन टू द ट्रैफिक, राइट? बिकॉज सारे लोग उसको देख रहे हैं रादर देन द ट्रैफिक लाइट्स. तो
2: ट्रू,
1: बहुत बड़ा गुनाह है.
2: इट इज इनसेन. कमेंट में वो लोग पूछ रहे हैं, वेट, हु काउंटेड द किसेस? एक कह रहा 300 वर्ड्स का ऐसे लिख देता यार, इससे तो बेटर ही था.

0: और यहाँ जनहित में जारी है ये वाली खबर। जनहित क्या, सारी बहनों के नाम जारी है ये वाली खबर। बहनों सुन रही हो ना तुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम द भाई जान्स।
1: हाँ जी हाँ जी, भाई जो हमारी जान है, let's revise and revive all those things, हाँ? जान लेने पे तुले हुए होते थे जब हम छोटे थे, like जान लेने पे। मेरा भाई तो मुझे WWF देखकर फिर वो सारे जो moves है ना मुझ पे try किया करता था, choke slam and all, मतलब कि यार धड़ाम है धड़ाम। फिर अब मैं भी कुछ कम थोड़ी ना थी, मैं भी उसको बहुत मार, एक बार उसने मेरा सलमान खान का पोस्टर फाड़ दिया था गुस्से में, और फिर मैंने उसकी जो धुनाई की थी कि मतलब आज भी वो याद करता है कि दीदी मैं भूल नहीं सकता। मैंने कहा भूलना भी मत,
0: वो बेटे की
1: छुआ कैसे तूने मेरा पोस्टर।
0: तो एक भाई था और एक भाई था तुम्हारे घर में, है ना, दोनों की दोनों ही बिल्कुल एक ही घर में। मैं तो आई एम थिंकिंग माँ बाप का क्या हाल होता होगा। यू नो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज माय मॉम हैज 3 ब्रदर्स, ओके, एंड शी इज दी ओनली सिस्टर, और जो हम है हमारे पास 0 ब्रदर, हम चारों बहने, ठीक है ना। तो अब तुम सोचो कि भाई मॉम का फुल ऑन फोकस होता था, एंड दूसरा होता था ऑफ कोर्स माय डैड, ही हैड 2 सिस्टर्स, राइट। सो अब वही केओस जो हर घर में होता है कि बहन ने आना भी है और बहन ने जाना भी है, है ना। तो हर घर में ये केओस रहता था हमेशा, राइट, कि भाई अगर तुम चली जाओगी तो मेरी बहनें आएंगी, और अगर बहनें आएंगी तो मैं कब जाऊंगी। सो ऑल दैट केओस को सॉल्व करते हुए कैसे घर घर में ये रेजोल्यूशन होता था कि सुबह ये जाएगी, शाम को ये होगा, भाई आएगा, भाई जाएगा। ओ माय गॉड, एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर सिस्टर के घर में, एंड देन द रोना धोना कि मैं एक दिन भी ना आऊं क्या, भाभी को आज ही जाना है। तो I think it's a drama in every household, right, in India, you know?
1: I am 110% sure. मतलब हर घर की कहानी है। In fact, mixtape है, I was remembering all these times कि कैसे हम जब अपने cousins के घर भी जाते थे राखी बांधने with mama and all, नजर हमारी राखी बांधने पे नहीं होती थी, हमारी ये होती थी कि वो गिफ्ट क्या मिल रहा है, डेरी मिल्क के साथ वो बड़ा वाला पैकेट दे रहे हैं कि क्या है, वहां पे नजर है, लगता है पैकेट में रखा हुआ है, लगता है यहाँ पे भाई राखी बांध लो, फोकस कर लो ना।
0: और एक बार तो मुझे ये भी याद है, हम तीनों बहने चारों को जैसे सारे नोट वोट छाप लिए ना सारे कजन से राखियां बांध के, उसके बाद हम चारों शॉपिंग पे गए लाजपत नगर दिल्ली में, मजा ही आ गया। मतलब उस दिन तो बहनों की भरमार लगी होती है, और वो दुकान वाले भैया तो इतने खुश होते हैं कि तुम्हारे और भाई बने। Remembering all those beautiful days from the 90s. Thank you so much, Anta.
1: Of course.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: Mumbai.

0: गणपत कौन है?
1: और दिल्ली के उस ट्रैफिक के नाम जो रक्षाबंधन पर पागल हो जाता है, ये वाला शो हमारा मस्ती मैडनेस रेडियो मस्ती 24/7 पर. हैप्पी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन.
2: Setting the perfect hot temperature for Friday.
3: हाँ, जिसको हमें instructions दिए जाते थे कि अच्छे से करो, ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे इधर से left to right.
1: गलत कर रही है. I know. It's so much fun. अब मैं आपको लेके जाऊंगी बहनों के नाम जनहित पे जारी, जो मैंने थोड़ी देर पहले कोशिश करी थी आपको बताने की खबर. Well, अभी अभी बेंगलोर से खबर कुछ ऐसी आई है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीधा का सीधा एक बात क्लियर कर दी है, कोई भी इंक्लूडिंग अ हस्बैंड कैन नॉट कमांड एंड डिमांड एनी फीमेल इंक्लूडिंग हिज वाइफ टू डू हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स. ऐसा कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने, क्योंकि एक आदमी ने रिविजन पिटिशन फाइल करी थी. और कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, दोनों ही आदमी और औरत में इक्वली शेयर होने चाहिए. अगर पेरेंट्स का ध्यान रखना है तो प्राइमरी जो है ड्यूटी वो है सन या डॉटर की, नॉट द सन इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ की, क्योंकि लुकिंग आफ्टर द इन लॉज शुड बी अ वॉलंटरी एक्ट एंड नॉट बाय फोर्स. मतलब जस्टिस चिलाकुर सुमालथा, मेरा मन कर रहा है मुआ, मुआ, मुआ. क्यों भाई, सही है कि नहीं है?
3: इनको इनको भाई बना लो, ये सही मटेरियल है भाई वाला.
1: सही बात है बिल्कुल, क्योंकि ऐसी अंडरस्टैंडिंग मजा ही आ गया बिल्कुल, है ना.
3: मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज जो बंदिया चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता बता के थक चुकी है, होता है ना कि जब यहाँ पे पुलिस या फिर जज के मुंह से निकलता है तब जाके इनको समझ में आता है कि अच्छा अब तो ये लीगल बात हो गई और ये ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा ही होना चाहिए.
1: Exactly.
3: Like normally भी.
1: और तुझे पता है ये जस्टिस जी ने सिर्फ यही कह के चुप नहीं रहे, उन्होंने कहा जब माँ के घर जाना है, मैट्रिमोनियल होम जाना है एक इंडियन औरत को, तो वो सबसे परमिशन क्यों लेती है? There is no need. Marriage is a sacred and beautiful bond, जिसमें कि दो लोग इकट्ठा आते हैं ceremonies करके, and उसमें होने चाहिए trust, respect, mutual support और ये सब. Wife की जो dedication है to the family, वो obedience और submission नहीं होती है. ओए होए, मजे ही आ गया कि जब उसको घर जाना है तो उसको घर जाना है. ऐसे पहली बात तो मुझे ये नहीं पता. लव इट जस्टिस, लव इट कर्नाटका हाईकोर्ट, जिंदाबाद. ठीक है भाई, है ना भाई?
3: ट्रू.
2: यू आर ट्यून्ड इन टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनी टाइम द देसी वे.
4: यो बॉयज, I am singing sound. Soup sound.

0: जो पूरा पूरा फेस्टिव टाइम शुरू हो जाता है ना, जैसे कि आज रक्षाबंधन है, उसके बाद में जन्माष्टमी है, फिर गणेश चतुर्थी है, इतना कुछ हो रहा है राइट ऑन रेडियो मसी 24/7. गाइस, दिस इज द टाइम जब हमें ऐसा लगता है उफ, इट इज हैप्पीनेस एवरीवेयर एंड गुड ब्लेसिंग्स.
1: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फन.
2: But Renuka, we have to tell them about the, I have been talking about it on my shows. We have to tell everybody what we saw at 21 Cup Road.
0: Oh my God.
2: Our surreal experience over there. Totally. मतलब हम सच्ची में होता है ना, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि the visual was so beautiful that picture cannot capture that.
0: No.
2: It was so beautiful.
0: Totally.
2: It was the same thing. जब हम वहाँ पे गए, we were like, what? What is this? So magical.
0: मजा आ गया. So, जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं, कुछ सालों से of course, हम गणपति जी को लेकर आते हैं अपने चतुर्थी पर, है ना, और फिर सेवा करते हैं सब कुछ, बड़े प्यार से उनको फिर बाय बाय करते हैं रोते हुए. एक्चुअली वी ऑल गेट सो इमोशनल बिकॉज दैट इज हाउ गणेश चतुर्थी इज राइट. एंड ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन मूर्तियां लाने की कोशिश करते हैं विद अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, बट व्हाट वी सॉ एट ज्योति एंड दिस इज एट 21 कफ रोड राइट, हमने जब ये उनका पूरा शोरूम देखा ऑफ दीज इको फ्रेंडली गणपतिस, मैं कहती हूँ आपको ज्वेलरी की जरूरत ही नहीं है. उनका जो हाथ का काम है वो इतना बेहतरीन है, मुकुट से लेकर एक एक डिटेलिंग तक कि, और 6 इंच से शुरू हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 6 इंचेस के गणपति टू ऑफ कोर्स गोइंग अप टू 42 और इवन मोर देन दैट राइट.
2: मैं तो कह रही हूँ कि जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस सेक आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू गो देयर वंस एंड टेक अ लुक एट इट, वेयर यू एंटर एंड यू आर जस्ट सराउंडेड विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के गणपति के आइडल्स.
0: ओनली दैट
2: एंड यू कैन नॉट पिक, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत, लाइक जहां पे मैं मुड़ रही थी वहां पे लग रहा था यार ये कितना सुंदर है, एंड आई वाज लाइक रेणुका हाउ आर वी गोइंग टू चूज फ्रॉम दिस, इट इज सो डिफिकल्ट.
0: एंड यू वांट विद दोस ब्यूटीफुल क्लोथ्स जो उन्होंने सैटिन के पहने हुए हैं, या यू नो जस्ट काइंड ऑफ डेकोरेटेड, या फिर इवन मिट्टी के, यू रिमेम्बर द ग्रीन कलर्स एंड इवन द मिट्टी के कलर के विद गोल्डन
2: व्हाइट कलर के कपड़ों के साथ, याद है आपको?
0: हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वेदर यू डू गणेश चतुर्थी और यू डोंट, यू हैव टू हैव अ गणपति आइडल इन योर हाउस एंड इट कैन नॉट बी फ्रॉम एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट 21 कफ रोड सिंगापुर एंड ज्योति का जो वो वेयर हाउस है वहां पर जाके देखो. ज्योति स्टोर्स कैंपबेल लेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ उनके वेयर हाउस की, जाके एक बार देख लो और मैं आई प्रोमिस यू यू विल फॉल इन लव. I'm still imagining. Oof, beautiful.
3: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.

0: all for one and one for all. A companion, a friend, a savior. Radio Masti 24/7 wishes all the siblings worldwide a very happy Raksha Bandhan.
1: भाई 9 बज के उस पार पहुंच चुके हैं. हैप्पी रक्षा बंधन एवरीवन. एंड यस, रिमेम्बर दोस टाइम्स व्हेन आप लोगों मतलब सिब्लिंग्स एक दूसरे से तो झगड़ते थे, लेकिन किसी तीसरे ने आपके सिब्लिंग से पंगा लिया तो सडनली यू आर वन टीम फॉर सम रीजन.
0: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेंपरेचर फॉर फ्राइडे.
2: दुश्मनों को गिरा देंगे. चाहे तू मेरा सबसे ज्यादा जानी दुश्मन है, लेकिन फिर भी बाहर वालों के सामने नहीं दिखाना है. No, but honestly, those are the days, right? मैं तो अपनी एक बहन के साथ मिलकर दूसरी बहन की चॉकलेटें चुराकने में ही मेरा तो मतलब परम जीवन था वो, क्योंकि मुझे चॉकलेट भी खानी होती थी तो फिर मेरे को इनाम में मिलती थी वो चॉकलेट जो मैं चुराती थी. और फिर जब उसको पता लगता था दूसरी वाली को कि भाई मैंने और बड़ी वाली ने मिलकर ये काम किया है, तो वो आती थी बोलने के लिए, मेरी चॉकलेट कहाँ है, किसने खाई है, क्योंकि वो एक एक बाइट लेके अंदर रख देती थी, है ना, वो आगे के लिए, रेनी डे के लिए. और हमारी आदत थी कि हमारी चॉकलेट हम खत्म कर देते थे उसी टाइम, बिकॉज हमारा रेनी डे उसी दिन होता था,
1: पर नजर रेनी डे पे जाती थी.
2: एग्जैक्टली. तो फिर उसको जब पता लगता था कि हमने बाइट लिया है और हमने चुरा लिया उसकी, तो फिर वो आती थी हमसे लड़ने के लिए. फिर हम दोनों मिल जाते थे, मेरी बड़ी बहन उसको कहती ठीक है तू 2 रुपए मेरे से ले ले, लेकिन लड़ मत, शोर मत मचा. तो वो कहती थी 3 लूंगी. उसने कहा ठीक है तू 3 ले ले. पर वहीं पर सारा कुछ हमारा सेटल हो जाता था, लेकिन हमें तो चॉकलेट मिल जाती थी भाई. तो ये होता था हमारे बचपन में. इट वाज एब्सोल्युटली फन बिकॉज़ यू नो घर में ही सौदेबाजी चल रही होती थी, बट दैट्स कूल.
1: हां, तो हमारे फाइनेंशियल नॉलेज आ भी तो वहीं से रही है ना.
2: Exactly.
1: कि ये सारी डीलें हमने क्रैक कर रखी है पहले से, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है. हमें रिज्यूम में बदक भी डालना चाहिए. मतलब मैं और मेरा भाई तो डीलें हमारी ऐसी होती थी कि जब, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था तो हम लोग टीनेजर्स भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही थे. तो अब मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आना है और उसकी गर्लफ्रेंड का आना है, तो हमने डील अपनी वो जो होती है ना ट्रीटी साइन कर रखी थी. Exactly. तू मेरी हेल्प करेगा, मैं तेरी हेल्प करूंगी, और एक दूसरे के सीक्रेट हम रिवील नहीं करेंगे.
2: बिल्कुल. और यही सौदेबाजी से करते करते हम बड़े हो गए. लेकिन कोई मजाल है बाहर का अंदर घुसे? अगर कोई बाहर का अंदर घुस जाए तो भैया नहीं, तू नहीं रह सकता. लेकिन हम एक दूसरे की जान ले लें वो अलाउड है. ओके,
1: वो अलाउड है.
2: और हमारे माँ बाप, ओ माई गॉड, एंड नो पन इंटेंडेड, माई डैड यूज टू से एक ही घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान पैदा हो गया है.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: लोगों को कुछ भी बेचा जा रहा है और लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, लाइक एनीथिंग, एंड दिस गाय प्रूव्ड इट.
1: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फंकीएस्ट एंड द फनीएस्ट एवर. मस्ती मैडनेस विद रेणुका.
2: मस्ती मैडनेस, दिस इज रेणुका एंड अंतारा. इट्स रक्षाबंधन एंड ऑफ कोर्स अंतारा, क्या खबर लाई हो तुम?
0: आपको याद है कि एक इन वन ऑफ द राउंड अप्स वी एक्चुअली सेड दिस न्यूज कि सबसे ज्यादा यूट्यूब पे इस वीडियो को जो है व्यूज मिले जहां पे सिर्फ एक अंडा रखा हुआ था, एंड घंटों घंटों वो सिर्फ एक अंडा ही रखा हुआ है.
2: यस,
0: एंड आई डोंट नो व्हाट पीपल वर वाचिंग, बट इट हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ व्यूज दैट वन वीडियो.
2: दैट्स
0: सो यू रियली डोंट नो व्हाट इज वर्किंग विद पीपल एक्चुअली. सो दिस गाय ओके स्टार्टेड एक इंस्टाग्राम का चैनल एंड अपना वीडियोस अपलोड कर रहा है, अपना फेस जो है कवर्ड विद अ मास्क, एंड रोज repeatedly he is claiming that he would reveal something crazy August 25th 2026. Now just before D-Day, like ताज़ा खबर है, just before final day इसने एक telegram का link share किया claiming that Instagram जो है वो delete करने वाला है मेरा video which he was going to upload. So he asked all these people to come join his telegram channel instead. And he charged them 500 rupees also to join.
2: Oh, अच्छा.
0: Almost 1.6 lakh people, huh. Very intelligent people, they paid. Which means, mudda laga 8 crore rupaye kama liye bande ne. Baithe baithe. And guess what he uploaded 26th of August ko. On the damn floor.
2: What did he upload?
0: A video saying, don't waste your time, time won't come back.
2: Mera बस चले, मैं इस इंसान का खून पीछा. ऐसे कहते हैं दुनिया भर का वेल बना देना इन नो टाइम. कितना इजी है लोगों का बुद्धू बनाना, सीरियसली इमोशंस के साथ खेल के. हाय राम, हम क्यों नहीं कर सकते.
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अंतरा, देर आर सम पीपल, आप कई बार जब बात करते हो ना, आपका मन करता है कि या तो मैं इनके घर में मक्खी बन के बैठ जाऊं और इनकी सारी की सारी बातें सुनूं, या फिर मैं इस इंसान के दिमाग में इसी टाइम घुस जाऊं और मुझे पता लग जाए कि ये सोच कर रहा है मेरे बारे में।
1: Setting the perfect hot temperature.
0: और सिर्फ इसीलिए मुझे 20th September को सुहानी शाह के शो पर जरूर जाना है।
2: बहुत ही क्रेजी है वो। I don't know whether a lot of people have watched, but I have watched a lot of her videos and everything, and it is crazy how I don't know how she does that. You know कि मतलब हालांकि मैं खुद नहीं चाहती कि वो मेरा दिमाग रीड करे, हैं? But I am very curious.
0: है ना?
2: How she does that?
0: But she's amazing. मतलब मैं देख रही हूँ कि वो ऑडियंस में बैठे बैठे एक इंसान से सिर्फ इतना पूछा उसने, चार पीछे मूवीज के नाम लिखे हुए हैं और वो कह रही है कि pick a movie. तो वो आदमी ना कि हाँ हाँ ये बताएगी मेरे दिमाग में क्या
2: भाई MBBS वाला है।
0: Exactly. So he says, मुन्ना भाई, and then he says, क्या मैं बता दूँ आपको? She says, हाँ हाँ बता दो, and he says, मुन्ना भाई, and then she says, I knew it. अब मतलब इसमें क्या जादू है? Then people said, नहीं नहीं ऐसे कैसे, you knew it बोल दिया तो हम थोड़े मान जाएंगे। She actually goes back to the मुन्ना भाई का पोस्टर और उसके पीछे लिखा हुआ है यू विल पिक मुन्ना भाई। उसके बाद लोगों ने चैलेंज किया कि साथ वाले पे भी यही लिखा होगा तुमने, यू विल पिक दिस वन। उसने बाकी के दिखाए, उसके पीछे लिखा था ही विल पिक मुन्ना भाई। मतलब उसको पहले से पता था कि वो उस आदमी से पूछने वाली है, वो रैंडम सा ऑडियंस में कोई बैठा हुआ है, वो उससे पूछेगी और वो यही पिक करेगा। आखिर क्यों? एंड हाउ डज शी नो अबाउट इट इन एडवांस, राइट? एंड दिस इज जस्ट अ वेरी सिली एग्जांपल। माय गॉड, शी कैन मेसमराइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाए ना जाए, अगर आपको लगता है बड़ी चीजें देखी हमने, ऐसे अपने बच्चों को लेकर जाओ, सिखाओ कि क्या होता है मेंटलिस्ट और क्या होता है दिमाग लगा के ऐसे जादू करना, राइट?
2: बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए रेणुका सुहानी शाह को, एंड यू हैव टू गो लाइव एंड विटनेस एंड जस्ट कैसे होता है अनफोल्ड एवरी सिंगल थिंग, तभी जाके मजा आएगा। सो 20th ऑफ सितंबर, संडे की शाम 6 बजे, क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर, सिस्टिक पर जाओ और बुक कर लो अपनी टिकटें।
0: परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाने बजाने वाले शोज होते हैं ना यार, ये तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, कॉन्सर्ट्स आते हैं। आई नो यू लव योर सिंगर्स, यू लव ऑल दैट, लेकिन एक मेंटलिस्ट का शो, वो भी इंडिया की वर्ल्ड रिनाउंड मेंटलिस्ट का शो देखना, ये मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई टोटली विल गो फॉर दैट एनी डे ओवर एनी अदर कॉन्सर्ट। सो गाइज, गो एंड गेट योर टिकट्स ऑन सिस्टिक, ओनली $69 ऑनवर्ड्स, एंड लुक आउट फॉर द कॉन्टेस्ट। अगर कॉन्टेस्ट के बारे में पूछना है तो हमें लिख दो 9151896 3, एंड यू मे स्टैंड अ चांस टू विन अ टिकट। हेलो, TNC'स अप्लाई।
3: Aamir Khan wondered.
4: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
3: Salman Khan wanted answers.
5: कैसे किया ये?
3: R. Madhavan said.
6: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
3: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 PM, Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English, tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: एंड ऑन रेडियो मसी 24/7 टिप टिप करते करते हम पहुंच गए हैं टिप ऑफ दिस आवर विच विल बी द एंड ऑफ आवर शो. जी हाँ, टिप टिप.
1: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: मस्ती मैडनेस जो है ना दिमाग को बहुत अलग अलग जगह लेकर जाता है जब ऐसे ऐसे बातें होने लगती हैं यहाँ पर. बट वेल, मैं ये कह रही थी बिफोर यू से एनीथिंग, मैंने ना अभी इस हफ्ते एक खबर दी थी, आई वाज लाइक कि एक बार तो रेणुका के साथ ये बात तो करनी करनी है.
0: बताओ,
2: हमारे मार्क भैया है ना, मार्क जकरबर्ग भैया.
0: हाँ जी, हाँ जी.
2: तो मार्क जकरबर्ग भैया ने जो है आयरलैंड में लिया है एक कासल.
0: अच्छा,
2: है ना. तो अब खास बात ये है कि कासल एक तो बहुत लाइक कासल है, बहुत ही बड़ा है.
0: ठीक है.
2: तो उनका जो डाइनिंग हॉल से किचन जो है 4.5 मिनट तक चलना पड़ता है, तब जाके वो किचन पहुंचते हैं.
0: खाना ही ठंडा हो जाएगा. मैंने तो इसीलिए नहीं लिया इतना बड़ा, नहीं तो नहीं तो मतलब कासल वासल ठीक है, बट द पॉइंट इज कि यार तुम्हें कुछ चाहिए भाई, पानी ला दे, खांसी आ रही है, तब तक तो मर ही जाएगा आदमी. 4.5 मिनट में वो जाएगा, 4.5 में आएगा, 9 मिनट बंदा बन गया.
2: हाँ, दिस इज द डिफरेंस. दैट इज व्हाई रेणुका इज रिच एंड आई एम नॉट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव टू एवरीबॉडी, बिकॉज राइट नाउ व्हाट शी सेड कि यार मैं पानी मंगाऊंगी तो वो 4.5 मिनट तक लेकर आएगा. यू नो व्हाट आई सेड, यार खाने को बैठी, अचार चाहिए, अब 4.5 मिनट तक चल के जाना पड़ेगा अचार लाने. एंड देन आई वाज सडनली रियलाइज कि जब मैं इतनी अमीर होंगी तो मुझे क्यों चलना पड़ेगा, मेरे लिए तो लोग आ ही सकते हैं ना.
0: सोच बदलो, देश बदलेगा. ये आदमी इस गाने में जुत्ती क्यों मांगता है? खुद को मारने के लिए नहीं, ठीक है. हमेशा जब इतने ज्यादा पैसे होते हैं और तुम किसी को बोलते हो कुछ ला दे, तो वो किसी और के लिए भी हो सकता है. रियली
2: भाई, लोगों
0: कासर में बैठी है.
2: अमीर लोगों की सुनो, ये होती है निशानियां, है ना, ये है असली अमीर.
0: कासर में बैठी है, खाना खा रही है, एक तो अचार ही याद आया इसको, अचार मंगवा रही है और ऊपर से मंगवा भी नहीं रही, खुद लेने जा रही है. तो बहन तू कैसल क्या प्योदे वास्ते खरीदा फिर? जोश में रहो.

0: और राइट, तो भाई अभी ये वाली खबर दिमाग में आ चुकी है तो ये देख ही मैं जाऊंगी, क्योंकि पिछली बार तो इनके कासल और इनके अचार ने ही हमको रोक दिया था. तो वेल, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाते ही आप लेटे हुए हैं डॉक्टर की टेबल पे, ठीक है, और फिर आप मुड़ के देखें कि डॉक्टर आ नहीं रहा, तो देखा कि भैया डॉक्टर तो एक यूट्यूब वीडियो देख रहा है, जो प्रोसीजर उसको तुम पे करना है उसका वीडियो देख रहा है वो, तो आपकी क्या रिएक्शन होगा?
1: Setting the perfect hot temperature for.
2: यार ये बहुत scary है, ये तो बहुत ही scary लगता है. हाँ, पैसा खर्च करके, भरोसा करके, इन्वेस्टमेंट इतनी सारी डाल रखी है और डॉक्टर वहाँ यूट्यूब वीडियो देख रहा है कि इसका करना क्या है.
0: एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. एक इंसान ने एक वीडियो डाला है जो कि काफी वायरल हो चुका है. यूट्यूब का मेडिकल ट्यूटोरियल चल रहा है पीछे, और जो डॉक्टर है वो हेडसेट लगा के अपने स्क्रीन पर देख रहा है और वो पेशेंट लेटा हुआ है. ओके, सो वेल ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो गया भाई, तुझे आता नहीं है, चल कर आए, ये तो बता दे, है ना. सो ऑब्वियसली बड़े सारे लोगों ने जब ये वीडियो देखा उन्होंने कहा यार ये क्या बात है. लेकिन जो कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस वीडियो को देख के कहा कि समटाइम्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमेशा इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं मिड ट्रीटमेंट, अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता है तो वो ऐसा देख लेते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट की जिंदगी ज्यादा जरूरी है. भाई मेरी फीलिंग ऐसी है कि भाई तू पहले देख के रखना, अगर तेरे को रिविजन चाहिए भी, पेशेंट के सामने तो ना देख, ये तो मैं देख के ना कर लूँ फिर अपना.
2: I say too much information. Like कहते ना how much rich is too rich. Like too much information जब आ जाती है. मतलब पहले थोड़ी ना इस तरह के बीच में अलाउड होता था कि डॉक्टर बैठ के चेक कर रहा है कि नहीं ये वाला जो सुई है यहीं से घुसाना है कहीं और से घुसाना है, एक चेक करते तो.
0: नहीं यार, पेशेंट भी बैठ के वीडियो नहीं ले रहा होता था. मतलब अगर तू बीमार है तो तू बीमार रहे ना यार. हाँ,
2: मेरा तो हार्ट, पता नहीं दूसरी चीज अगर हार्ट अटैक पहले आ जाए देख के कि भाई ये क्या कर रहा है.
0: तो बस यही हुआ इस इंसान की, घबराहट के मारे उसने वीडियो ले लिया और वीडियो उसने पोस्ट कर दिया. पोस्ट हो गया वायरल, फिर डॉक्टर्स एक साइड हो गए, पेशेंट एक साइड हो गए, और उन दोनों की चल रही है यहाँ पर लड़ाई. और हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें भाई घरों में देखना है कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं. बुआएं जो हैं उन्होंने शुरू कराई हैं कि नहीं कराई अभी तक, आधा दिन होने को आया है, और मतलब लड़ाइयाँ हो जानी चाहिए अब तक. तो रोती हुई ना
2: नहीं शुरू है, अभी तो शुरू है, अभी तो राउंडे शुरू होंगी ना, तो वो राउंड बाय राउंड होगा.
3: मैं अपने भरा दे गल साल एक बारी आंदियां ते मैनू इस तरह कर दिया है, ते भाभी बोले ना तुसी क्लेश ना पाया करो मेरे घर आके. हैप्पी रक्षाबंधन गाइस,
2: हैप्पी रक्षाबंधन गाइस.

0: A thread of love which brings in countless joys. A sacred bond which grows deeper every day. Radio Masti 24/7 wishes all the siblings worldwide a very happy Raksha Bandhan.
1: आरजे गया एग्जिट पर
2: और गाने आ गए
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live fan. Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: 1, 2, 3, 4. Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musty Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. Musty Music Cafe.

0: Welcome to your chill zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.
1: अगला गाना तुसी सुनोगे पंजाब दे तड़कीले ते पड़कीले नौजवान गबरू कातक दी आवाज। इस गाने की फरमाइश की है लुधियाने तो सुखविंदर सिंह, होशियारपुर तो बेबी बेदी ते अजरौर तो मिंटू जी ने। पेश है बंब गाना।
2: क्योंकि

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं समर लेजेंड्स वाला लौट आया हूँ एक बार फिर से लेकर लेजेंड्स फिर से। तो हर बार की तरह बॉलीवुड के लाजवाब सितारों में से एक और हंसी सितारा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो कौन है उन्हें पहचाने की कोशिश कीजिएगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की। आज हम जिस लेजेंड की बात करने वाले हैं वो है तो सुनार, लेकिन एक प्रहार उन्होंने लोहार जैसा किया था जो आज तक पूरी दुनिया को याद है, और उस प्रहार का नाम है शोले। और उस प्रहार को करने वाले का नाम है प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश सिप्पी।
1: कितने आदमी थे
2: सरदार? 2 आदमी थे।
1: दो आदमी।
0: अपने परफेक्शन के लिए मशहूर रमेश सिप्पी ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं जो आज भी याद की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हर फिल्म यूनिक है, चाहे वो सीता और गीता में दो बहनों की कहानी हो, या फिर शोले, या फिर बाप और बेटे के बीच की कहानी शक्ति हो, हर फिल्म लाजवाब है। तो सिंगापुर रमेश के जीवन और उनकी फिल्मों के बारे में आज हम इस शो पर जानेंगे। आप बस उनकी फिल्मों के गानों को एंजॉय कीजिएगा और उनकी कहानी को सुनने के लिए लौट कर आइएगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ समर, लौटूंगा यहीं पर। जा कहाँ से लौटूंगा, ऐसी बोल दिया।

0: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रमेश सिप्पी स्पेशल शो।
1: जी
0: मैं हूँ समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। देखिए रमेश सिप्पी एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी ये फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी साहब के बेटे हैं, तो फिल्मों का माहौल इन्हें बचपन से ही मिला। चारों तरफ फिल्मों की बातें, फिल्म के प्रोड्यूसर्स का आना जाना, डायरेक्टर्स का आना जाना, फिल्म स्टार्स की पार्टियों में आना जाना। तो साहब ये पैदा हुए 23 जनवरी 1947 को, और उसके बाद से जब से इनके पिताजी इस बिजनेस में आए वो फिल्मी माहौल में ही पले बढ़े। हालांकि शुरुआत में नहीं, कराची में ये पैदा हुए थे साहब, जो अब पाकिस्तान में, और ये महज 6 साल के थे जब इन्होंने पहली बार फिल्म के सेट पर कदम रखा था। तो 6 साल की उम्र से ये फिल्मों के आसपास और फिल्में इनके आसपास थी, और वो फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके सेट पर इन्होंने कदम रखा था, वो थी सजा। महालक्ष्मी स्टूडियोज में ये फिल्म बन रही थी। रमेश सिप्पी बताते हैं कि वहां जाने के बाद मैंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स और सेट्स देखे, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बस गईं, और यहीं से मुझे फिल्मों का शौक चढ़ गया। रमेश सिप्पी जब 9 साल के थे तब इन्होंने फिल्म शहंशाह में काम किया था, जो 1953 में आई थी। इसमें ये अचला सचदेव के बेटे बने थे, तो यहाँ से इन्होंने फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मेरे सनम में भी इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, जिसे जीपी सिप्पी यानी इनके फादर ने ही प्रोड्यूस किया था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि रमेश सिप्पी ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी फिल्मों में काम किया है, पर्दे पर वो दिखाई दिए हैं, वरना लोग यही समझते हैं कि वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। अच्छा, पढ़ाई में ग्रेजुएशन करने के बाद ये लंदन चले गए साहब पढ़ाई करने के लिए आगे। यहाँ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 6 महीने पढ़ाई की। ये यहाँ इसलिए गए थे ताकि बिजनेस को समझ सकें,

बिजनेस कर सकें, बिजनेस की समझ आ जाए इन्हें। और फिर वहां से आने के बाद इन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर लिया और साथ ही फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गए। करीब 7 साल ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, लेकिन फिर इनके पिताजी ने कहा कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर ही रहोगे या कुछ करना भी आगे। तो इन्होंने फिर अपनी पहली फिल्म बनाई जिसकी बात इस ब्रेक के बाद करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। ये कमाल के गाने रमेश सिप्पी साहब की फिल्मों से निकाल कर लाए हैं आपके लिए, तो इन्हें तो सुनिए, एंजॉय भी कीजिए और वापस भी आइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहीं पर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ, और आज हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी साहब की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जब जीपी सिप्पी साहब ने कहा कि भाई सारी जिंदगी असिस्टी करोगे क्या, फिल्में नहीं बनाओगे क्या, तब इन्होंने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था अंदाज। पहली फिल्म थी रमेश सिप्पी की और ये सुपरहिट हो गई। ये फिल्म कई लोगों के लिए पहली फिल्म थी और उनकी भी ये पहली ही फिल्म हिट हो गई। सलीम जावेद ने ये फिल्म लिखी थी जो इनकी पहली फिल्म थी हिट। इससे पहले ये गुलजार साहब को असिस्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो हालांकि राज साहब के साथ पहली फिल्म कर चुकी थी सपनों का सौदागर, लेकिन ये उनकी पहली मेजर हिट फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब, जिनकी एज अ हीरो ये लास्ट फिल्म थी। फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया था, जो बेहद कमाल का था, और गाने लिखे थे हजरत जयपुरी साहब ने।

0: और ये आखिरी फिल्म थी शंकर जयकिशन की एक साथ, क्योंकि इस फिल्म के बाद जयकिशन साहब की डेथ हो गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की सक्सेस का जो सबसे बड़ा राज है वो ये कि इसमें राजेश खन्ना का 10 मिनट का कैमियो है और इस 10 मिनट में ही इन्होंने धूम मचा दी थी। इस फिल्म में वो देखने लायक है हेमा मालिनी और राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज वो गाना जो कल्ट क्लासिक बन गया, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: जिंदगी एक सफर।

वेल, रमेश सिप्पी के डायरेक्शन की एक गजब की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद तो लगभग हर फिल्म इन्होंने हिट ही दी। तो पहले सुनते हैं ये गाने और मिलते हैं इन गानों के बाद और रमेश सिप्पी साहब की कहानी को आगे बढ़ाएंगे उनकी आगे आने वाली फिल्मों के साथ। So stay connected and keep listening, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो since 2009, रेडियो मस्ती।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: लड़ना झगड़ना,
1: वो रूठना मनाना,
0: याद है टीवी के रिमोट से लेकर मम्मी पापा से डांट पड़वाना। आपस में पंगे लो तो कुछ भी नहीं, लेकिन कोई और उंगली उठाए किसी एक पे तो हम किसी से कम नहीं।
2: फूलों का तारों का सबका कहना है।
3: सेलिब्रेटिंग द प्राइसलेस बॉन्ड ऑफ सिबलिंग्स, हैप्पी रक्षाबंधन।
4: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मजी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ। आज रमेश सिप्पी साहब की बात हो रही है। तो पहली फिल्म हिट होने के बाद, अंदाज के हिट होने के बाद, रमेश सिप्पी साहब को एक टीम मिल गई जो हमेशा इनके साथ रही, और उस टीम का एक परमानेंट मेंबर एक जोड़ी थी, राइटर सलीम जावेद की जोड़ी। अंदाज के बाद इन्होंने एक स्टोरी और लिखी और रमेश जी के पास पहुंच गए। सिप्पी साहब को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। हीरोइन ढूंढने की इन्हें जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इससे पहले वाली फिल्म अंदाज में हेमा ने जबरदस्त एक्टिंग करके वो छाप छोड़ी कि रमेश सिप्पी साहब की वो परमानेंट हीरोइन बन गई एक तरह से। तो इन्होंने हेमा को ही लेना अच्छा समझा। इस फिल्म में हेमा का डबल रोल था और फिल्म का नाम था सीता और गीता।
6: ओफो, यू नहीं मानेगी क्या?
5: लेकिन इस फिल्म में दो नए हीरो थे। नहीं, हीरो तो पुराने थे, लेकिन रमेश जी के साथ ये पहली बार काम कर रहे थे, और वो थे धर्मबाजी यानी धर्मेंद्र साहब और संजीव कुमार जी, दोनों ही मजे हुए एक्टर, और नतीजा ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट। संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज एक गाना तो बहुत ही हिट था। अरे रे रे रे, सुनेंगे आप, सुन लीजिए।
7: हवा के साथ साथ,
8: अरे रे रे,
7: घटा के संग संग,
8: संभालना।
7: हवा के

हेमा मालिनी का इसमें लीड रोल था, मतलब उन्हीं पर बेस्ड थी पिक्चर, टाइटल भी यही था, सीता और गीता डबल रोल था, इसलिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, जो इनका पहला अवार्ड था। लगातार दो सुपरहिट फिल्में देने के बाद अब जीपी सिप्पी साहब ने कहा कि कोई एक्शन फिल्म बनाओ यार, तो उन्होंने रमेश सिप्पी को सजेस्ट किया कि तुम धर्मेंद्र और हेमा को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाओ। तो इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई, चलिए मैं नाम बता देता हूँ, वैसे आपने गैस किया सही किया है, वो फिल्म थी शोले। लेकिन इसका आइडिया कैसे आया और बाकी स्टार कास्ट कैसे इन्होंने सिलेक्ट की, इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए शोले की कहानी, मतलब शोले की कहानी शुरू होने वाली है इस ब्रेक के बाद। रमेश सिप्पी हैं आज के हमारे लेजेंड, में हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती, और मैं समर हूं आपके साथ। लेजेंड्स फिर से हमारे शो का नाम है और आज हम बात कर रहे हैं रमेश सिप्पी साहब की। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि दो लगातार हिट फिल्म देने के बाद रमेश सिप्पी साहब ने एक एक्शन फिल्म बनाने की सोची। पिताजी ने सजेस्ट किया था जीपी सिप्पी साहब ने, तो इसके लिए रमेश जी की बात हुई सलीम जावेद से। तो हुआ यूं कि उस समय डाकुओं का बोलबाला बहुत ज्यादा था इंडिया में, तो इस पर सलीम जावेद ऑलरेडी एक स्टोरी लिख रहे थे। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक आर्मी ऑफिसर के परिवार को एक डाकू मार देता है और फिर वो उसका बदला लेता है। तो ये स्टोरी रमेश जी को बहुत अच्छी लगी, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस किए, यानी आर्मी को पुलिस कर दिया और ऑफिसर का बदला लेने के लिए दो जवानों की एंट्री भी करवा दी। वेल, सीता और गीता में से हेमा, संजीव कुमार और धर्मेंद्र तो थे कास्टिंग में, लेकिन गब्बर और जय के लिए फिर तलाश शुरू हो गई साहब। गब्बर के लिए पहले डैनी डेंजोंगपा को कास्ट किया गया, लेकिन उनके पास डेट्स की कमी थी और रमेश सिप्पी अपनी डेट्स पर ही फिल्म को शुरू करना चाहते थे, तो इस वजह से गब्बर की तलाश अब भी जारी थी, क्योंकि डैनी ने मना कर दिया था और डैनी की डेट्स पर रमेश सिप्पी फिल्म शूट करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जल्दी इसे शुरू करना चाहते थे। तो इसके बाद जब गब्बर सिंह के लिए वो ढूंढ रहे थे किसी बढ़िया से कलाकार को, तब सलीम खान ने जावेद अख्तर से कहा कि याद है तुमने मुझसे एक लड़के का जिक्र किया था कि अमजद नाम का एक लड़का है जो अच्छा थिएटर करता है, कदकाठी भी अच्छी है। दरअसल दो साल पहले जावेद अख्तर ने ऐसे अमजद का जिक्र सलीम से किया था, तो फिर इसके बाद अमजद खान को बुलाया गया साहब और उनसे बोला गया कि आपकी दाढ़ी अच्छे से बढ़ जाए तब आइएगा कुछ दिनों के बाद। तो साहब फिर कुछ दिनों के बाद अमजद खान आए और फिर उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और वो फाइनल कर लिए गए गब्बर के रोल के लिए, लेकिन अभी भी जय का रोल बाकी था। तो इसके लिए सलीम जावेद ने पहले ही अमिताभ बच्चन को सेट कर रखा था, क्योंकि इससे पहले दोनों ने जंजीर में साथ साथ काम किया था अमिताभ बच्चन साहब के। तो जब जंजीर के बाद शोले वो लिख रहे थे तो जय के कैरेक्टर के लिए इनके दिमाग में अमिताभ थे, तो फिर जब ये बात रमेश जी को बताई गई तो उन्हें भी अच्छी लगी ये कास्ट। तो इस तरह से शोले की कास्ट पूरी हो गई। और भी बहुत सारी बातें हैं शोले से जुड़ी हुई, कुछ आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रमेश सिप्पी स्पेशल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स फिर से मैं

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Bust up the music, people, sing it!
2: नाचने का मन है, मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
4: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.

0: वेलकम बैक सिंगापुर, रमेश सिप्पी स्पेशल शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से, और मैं समर हूं आपके साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं दोनों भाई फैलाकर। शोले की हम बात कर रहे थे, मैंने शुरू में कहा था कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो जो लोहार वाला प्रहार था वो यही था। फिल्म को बनने में 3 साल लगे थे और इस फिल्म में पहली बार 75 mm के प्रिंट्स यूज किए गए थे। फॉरेन से स्टंट डायरेक्टर बुलाए गए थे। फिल्म जब शूट हुई तो बहुत सारे किस्से हुए साहब, उनमें से कुछ किस्से याद आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि ये फिल्म 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, लेकिन इस दिन एक भी सीन शूट नहीं हो सका क्योंकि भयंकर बारिश आ रही थी साहब। इस दिन को याद करते हुए रमेश सिप्पी कहते हैं कि शायद बापू यानी महात्मा गांधी नहीं चाहते होंगे कि इस दिन तुम्हारी ये वायलेंट स्टोरी शुरू हो। सिंगापुर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसलिए रमेश जी ने ये कहा, हालांकि मजाक में कहा था। इसके बाद दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को फिर शूटिंग शुरू हुई और पहला सीन पता है कौन सा था? वो था जब ठाकुर साहब की तिजोरी में चोरी करते हुए जया बच्चन इन्हें देख लेती है और इन्हें चाबी दे देती है। फिर सुबह अमिताभ बच्चन चाबी वापस करने आते हैं और बोलते हैं आगे से ऐसी कोई गलती वो नहीं करेंगे। ये वाला सीन पहला सीन था। कुछ और भी सीन है
1: तुरमा भाई?
2: हाँ भाई,
1: हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
2: 1000 रुपए?
1: हाँ हाँ, 1000 रुपए।
2: अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
0: तो वेल, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में सुनिए ये गाने रमेश सिप्पी जी की फिल्मों से। मैं लौट कर आऊंगा, समर है मेरा नाम, ये मत भूल जाएगा। ये शो है लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं। कीप लिसनिंग।

0: लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। ये है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं समर आपके साथ लेजेंड्स फिर से के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां पर आज रमेश सिप्पी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगापुर रमेश सिप्पी अपने परफेक्शन के लिए तो जाने जाते ही है। इसके बारे में एक किस्सा है उनके परफेक्शन का। फिल्म का एक सीन है जब गब्बर, ये मैं शोले फिल्म की बात कर रहा हूँ, जब गब्बर ठाकुर के पूरे परिवार को मार देता है और जब ठाकुर घर आते हैं लौटकर तो परिवार के सभी लोगों की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है, ढकी हुई। दरअसल रमेश जी इस दिन कोई दूसरा सीन शूट करना चाहते थे, लेकिन इस दिन भी बारिश आने की संभावना थी, इसलिए बादलों की वजह से थोड़ा अंधेरा था। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि क्यों ना यहाँ वो वाला सीन शूट किया जाए जब ठाकुर घर आता है और जब उसे सब मरे हुए मिलते हैं, घर परिवार के लोग, तब ये सीन शूट किया गया। और जब ठाकुर घर आता है तो हवाएं चलने लगती हैं, आपको अगर मौका मिले तो देखिएगा। और जब सबकी डेड बॉडी से कपड़ा उड़ता है तो ये उड़ने वाला सीन 22 टेक में पूरा हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का परफेक्शन है रमेश सिप्पी का। इसके अलावा शोले पहली मूवी है आज तक जिसने डायलॉग्स के रिकॉर्ड निकाले।
1: फ्रैंकली उस फिल्म में सुने जाने का बड़ा महत्व है। आज तक उसकी सारी लाइनें हर सिचुएशन में इस्तेमाल होती हैं।
2: ये तो है, डायलॉग का रिकॉर्ड भी निकला पहली बार, हाँ, और शायद आखिरी बार भी।
1: बिल्कुल।
2: और लोग एक एक एक तरह से मेस्मराइज हो जाते थे। क्या होता था, डायलॉग रिकॉर्ड निकला, एक तो फैसिनेट हो गई कि फिल्म के डायलॉग पिक्चर के बिना, वो एक फैसिनेशन हुई। लेकिन डायलॉग सुने,
1: उसके डायलॉग लेकर इमॉर्टल भी हो गया ना, बिल्कुल।
2: हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कैसे ये हुआ। हाँ। तो डायलॉग सुने कि ये पिक्चर तो जाके फिर देखनी पड़ेगी। हाँ। अंदर जाते थे फिल्म देखते थे, बाहर आते थे तो फिर डायलॉग सुनते।
0: इस फिल्म का एक एक डायलॉग कितना बड़ा हिट हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म मानी गई है शोले।
3: वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों।
0: और न सिर्फ डायलॉग्स बल्कि म्यूजिक भी कमाल का था, आर डी बर्मन का और बोल थे आनंद बख्शी साहब के।

इसके अलावा ये दोस्ती तो फिर एक और दोस्ती का कल्ट सॉन्ग बन गया, दोस्ती के लिए नहीं हर फ्रेंडशिप डे पर ये तो बजता ही है। तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे सिंगापुर। इसलिए सुनते रहिएगा आप लेजेंड्स फिर से समर के साथ, लौटता हूं गानों की बात।

0: जिनके साथ बनती नहीं पर जिनके बिना चलती भी नहीं।
1: भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: Wishing all the siblings worldwide a very happy Raksha Bandhan.

0: वेलकम बैक, मैं हूँ समर लेजेंड्स। फिर से मैं एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम रमेश सिप्पी साहब की बात करेंगे। रमेश सिप्पी साहब की सबसे कामयाब फिल्म थी शोले, और अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन गब्बर इनमें से सबसे ज्यादा फेमस हुआ। दरअसल उस वक्त मध्य प्रदेश में गब्बर उर्फ गबरा नाम का एक डाकू बहुत फेमस था, या इनफेमस था, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कुख्यात था साहब। इनफेमस इज द राइट वर्ड। और किसी पुलिस की सर्चिंग लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। तो इसे किसी तांत्रिक ने कहा था कि तुम 121 लोगों की नाक काट कर देवी माँ को भोग लगाओगे, चढ़ा दोगे, तो तुम कभी भी किसी और की गोली से नहीं मरोगे। तो इस चक्कर में इस डाकू ने कई पुलिस वालों की भी नाक काट दी थी। तो इस डाकू से फिल्म के राइटर सलीम खान परिचित थे, क्योंकि इनके पिता पुलिस में ऑफिसर थे और वो बड़े बड़े डाकुओं से मिल भी चुके थे। तो ये गब्बर का कैरेक्टर सलीम खान ने उसी गबरा से उठाया था। हालांकि कुछ स्टोरी फिर अपनी तरफ से उन्होंने लिखी। इसके बाद सूरमा भोपाली भी भोपाल में एक असली कैरेक्टर था, उसी पर जगदीप साहब को सूरमा भोपाली बनाया गया।
1: सूरमा भोपाली, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो।
2: अरे मियां, कम नहीं करूंगा तो क्या बढ़ाऊंगा। तो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे।
1: ये लो 2 रुपए का नोट।
2: हाँ वो तो मैं भी दे दिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात। अच्छा साहब, तो खुदा
1: पैसे तो वापस कर दो।
2: पीछे मांग रहे हो?
1: वो नोट तो 2 रुपए का था।
2: अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है।
1: 2 रुपए में इसी लकड़ी?
2: और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे। देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवान की डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: तो कहने का मतलब ये है कि और भी बहुत सारी बातें हैं शोले से जुड़ी हुई, लेकिन रमेश जी की और भी कई फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। तो शोले के 5 साल बाद रमेश सिप्पी साहब ने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज टाइप की एक फिल्म बनाई। काफी महंगी थी फिल्म, और इस फिल्म में एक स्पेशल कैरेक्टर था जो बहुत फेमस हुआ। रमेश सिप्पी की फिल्मों के विलेन बड़े फेमस होते हैं, पहले गब्बर और फिर इस फिल्म का शाकाल। मैं फिल्म शान की बात कर रहा हूँ।
3: अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है।
0: सिंगापुर अभी शान की बात शुरू ही की है, तो शान से एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिर से फिल्म शान की। स्टे कनेक्टेड।

0: और नखरे वाली
1: दूंगी मैं

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मस्ती। और मैं हूं जमान आपके साथ लेजेंड्स। फिर से शो में बॉलीवुड के सितारों की कहानी आप तक पहुंचाता हूं। तो आज हम रमेश सिप्पी साहब की बात करें। अभी जिस फिल्म का हम जिक्र करने वाले हैं वो है शाम।

0: एक बार फिर अमिताभ बच्चन, लेकिन इस बार कुछ लोग नए दस्ते में। हालांकि राइटर वही थे, सलीम जावेद। सलीम जावेद इकलौती राइटर जोड़ी थी जो पूरी स्टोरी लिख कर देते थे विद डायलॉग।
1: क्या बात है, लाजवाब है, चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही, नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूँ बबुआ।
0: इस बार शशि कपूर थे, परवीन बाबी, जॉनी वॉकर और शाकाल के रोल के लिए कुलभूषण खरबंदा। फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं रही उस वक्त के हिसाब से, लेकिन आज देखिए तो फिल्म बहुत बहुत बड़ी हिट मानी गई है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की रही, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इसे मिला। और गाने तो कमाल थे भाई साहब, फिर वो चाहे यम्मा यम्मा हो या फिर जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, हर गाना हिट था साहब। इसके बाद फिर से इन्होंने बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई, और वो थे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब। और वो फिल्म थी शक्ति, कमाल की फिल्म। पहली बार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग में कमी नहीं रखी। वैसे शुरू में यही लग रहा था कि दिलीप

0: साहब हैं तो ये फिल्म दिलीप साहब की होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी कमाल का काम किया इस फिल्म में। दिलीप कुमार जो एक पुलिस ऑफिसर हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं, एक बार अमिताभ की जान की परवाह नहीं करते और ये बात इनके बेटे अमिताभ को चुभ जाती। तो ये इमोशनल स्टोरी दिखाई है जिसमें एक से बढ़कर एक डायलॉग दोनों ने बोले। सुनेंगे आप, ये सुनिए।
1: आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
2: इसलिए कि जहाँ तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता।
1: तो पुलिस स्टेशन बुला लेते, वो तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है।
2: देखो विजय, जो भी हो अब भी तुम मेरे अपने बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो जो देखो अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
1: जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं?
0: कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार के बाद डायलॉग अगर कोई बोलता है, मतलब इतनी इफेक्टिव डिलीवरी डायलॉग्स की कोई करता है, तो वो अमिताभ बच्चन साहब है। और अगर दोनों ही एक फिल्म में हो तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिल्म में एक गाना भी बड़ा हिट हुआ था, वो जाने कैसे कब कहां। और एक और था जो मुझे बड़ा पसंद है, हमने सनम को खत लिखा। तो सिंगापुर बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आज की आखिरी मुलाकात रमेश सिप्पी की फिल्मों के साथ। स्टे कनेक्टेड।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
3: ऑल इज वेल।
2: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
5: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

रेडियो मस्ती सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। ये आपने ट्यून इन किया है और जहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, मेरा नाम है समर लेजेंड्स, फिर से मेरे शो का नाम, जहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी साहब की। रमेश सिप्पी साहब ने फिल्मों में तो कमाल धमाल किया ही, साथ ही उन्होंने टीवी पर भी जब कदम रखा तो भाई साहब वहां पर भी हंगामा मचा दिया। एक सीरियल बनाया उन्होंने जिसका नाम था बुनियाद। ये सीरियल बहुत हिट हुआ और इस सीरियल की एक्ट्रेस किरण जुनेजा से फिर इन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि ये रमेश सिप्पी साहब की दूसरी शादी है। वैल इनकी निजी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है और रमेश सिप्पी साहब के दो बेटे भी हैं। हालांकि अब रमेश सिप्पी ने फिल्में बनाना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ फिल्में जरूर प्रोड्यूस की इन्होंने, जिनमें से कुछ हिट रही और कुछ चल नहीं सकी, लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा में बड़े अदब से बड़ी शान से लिया जाता है। जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो आज भी याद हैं और हमेशा याद की जाती रहेंगी। वेल, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है सिंगापुर, तो अभी इस शो को मैं यहाँ पर रैप अप कर रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें आकर हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बताएं। और ये भी चाहता हूँ कि आप कुछ वादे करते जाएं, आप कहें कि आप रखेंगे अपना ख्याल, क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अपने ख्याल के साथ साथ अपने अपनों का, अपने आसपास के लोगों का, चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा, मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूँ यहीं पर, मिलूंगा भी यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: विशिंग ऑल द सिबलिंग्स वर्ल्ड वाइड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
2: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे। जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर एप मेन्यू,
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: सस्वीकार गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #ho और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
1: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
6: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: all for one and one for all. A companion, a friend, a savior. Radio Masti 24/7 wishes all the siblings worldwide a very happy Raksha Bandhan.
1: आरजे गया एग्जिट पर
2: और गाने आ गए
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
4: चेक इट

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: अच्छा पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: Aamir Khan wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
4: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजे आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: जिनके साथ बनती नहीं पर जिनके बिना चलती भी नहीं।
1: भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
2: Wishing all the siblings worldwide a very happy रक्षा बंधन।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, टुडे इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। फ्राइडे भी है, राखी भी है, मतलब भाई बहन भी मिल रहे हैं और साथ में ये भी डिसाइड कर रहे होंगे कि गिफ्ट कौन देगा, बिल कौन भरेगा, घूमने कहाँ जाएंगे। सो इट्स अ परफेक्ट वर्दी फ्राइडे डेट, राइट? भाई बहन वाली, किसी का प्लान लंच का है, किसी का डिनर का है, किसी का बस मिल लेंगे, वो जो था ना अब फुल आउटिंग बन चुकी है। और कुछ सिबलिंग्स जो है वो तो आपस में व्हाट्सएप भी कर रहे होंगे कि अरे तू बोलना यार, अरे तू डिसाइड कर ले यार, अरे मैं क्या करूं यार। इसी कंफ्यूजन में फ्राइडे का जो असली एंटरटेनमेंट है वो छुपा हुआ है। आस्क मी व्हाई। हाय, गुड इवनिंग सिंगापुर, मैं हूं मुग्धा और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.1 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, बिकॉज इट्स फ्राइडे। और आज फ्राइडे भी है, आज रक्षाबंधन है, तो शो भी थोड़ा सिबलिंग मोड में जाएगा, जाना भी चाहिए, बनता है, टेंशन मत लो। 3 घंटे में आपको इमोशनल स्पीच भाई बहन के रिश्ते की बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, नहीं मिलेगी मुझसे आपको। हम 3 अलग अलग फिल्म्स की बात करेंगे जिनमें 3 अलग अलग तरह के सिबलिंग इक्वेशंस हैं, उनको पिक करेंगे। एक है जहाँ पे भाई बहन एक दूसरे की टीम हो जाते हैं, एक जहाँ पे कंपटीशन तो है पर कनेक्शन भी काफी स्ट्रांग है, और एक है जहाँ पे मोस्टली लॉट ऑफ सार्कैज्म है और वो बहुत ही प्यारे तरीके से डिलीवर किया गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इस फर्स्ट आर का जो है वो है फुल ऑफ फैमिली केओस भाई बहन का रिलेशन, एंड दैट इज द मेहरा फैमिली केओस। क्रूज का ग्लैमर है, कबीर आयशा की केमिस्ट्री है, एंड द मूवी इज दिल धड़कने दो। राइट, राखी आ चुकी है, फ्राइडे आ चुका है, अब हम देर नहीं करेंगे।
2: मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हम के बने सभी मत वाले।
1: जल्दी से जाइए, वापस आइए और मस्ती हैंगआउट 2.0 के इस फ्राइडे राखी फीवर में हम मेहरा सिब्लिंग्स की बात करेंगे विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ आल्सो।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे इवनिंग है सिंगापुर और रक्षाबंधन का जो दिन है वो एक चीज ऑफिशियली अलाउ करता है आपको, भाई बहन एक दूसरे के पुरानी जो फाइल्स हैं, भूली बिसरी यादें हैं, वो उसको खोल सकते हैं। तू बचपन में ऐसा था, तू मम्मी का फेवरेट था, अरे यार तू जो कि कुछ नहीं कहता है, तू तो कुछ करता ही नहीं था, और 10 मिनट के बाद दोनों साथ में डिनर प्लान कर रहे होते हैं। यही तो है सिब्लिंग का प्यार, राइट? दिल धड़कने दो जो फिल्म है ना, वो फैमिली का बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा दिखाती है। घर वाले अक्सर सबके रोल्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं, कौन बिजनेस संभालने वाला है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सीरियस होगा, बट रियल लाइफ को ना कोई फिक्स्ड कास्टिंग पसंद नहीं है। अब आप देखो ना, एक 16 साल का बच्चा है और वो 16 साल का बच्चा AI एंटरप्रेन्योर है। इसका नाम है राहुल जॉन अजू। इस वक्त वो अपनी कंपनी चला रहा है और जो ट्विस्ट है वो बाकी है। उसके फादर उसकी कंपनी में काम करते हैं, 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है उनकी। अब राहुल के मुताबिक, उसका नाम है राहुल जॉन अजू, अब राहुल के मुताबिक क्या है ना कि उनके फादर का जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है वो उनके बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो जनरली 16 की एज में बेटा क्या कहता है, पापा थोड़े पॉकेट मनी दे दो ना, आप तो थोड़ा बढ़ा दो ना, इतना तो बनता है ना। लेकिन यहाँ पे कॉन्वर्सेशन इज एंटायरली डिफरेंट, चेंज हो रही है। और क्या हो रहा है, पापा सैलरी क्रेडिट हो गई है, आप चेक कर लेना। मुझे ये स्टोरी इसलिए बहुत मजेदार लगती है क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप जो ना फिक्स्ड हो सकते हैं लेकिन रोल्स आप फिक्स नहीं कर सकते यार, अब तो नहीं कर सकते एक्चुअली। छोटा है बड़ा है, यू नेवर नो, भैया अभी वो छोटा है आपका भाई और वो कल एडवाइजर बन सकता है और आपको आपकी लाइफ पे ज्ञान दे सकता है ना। आज पापा गाइड कर रहे हैं, कल बेटा

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे इवनिंग में भाई बहन के साथ एक प्रॉब्लम आती ही है। हाई सिंगापुर, दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.2 पे। आप बोलने कुछ जाओ उसके पहले सामने वाला बोल दे, मुझे पता था तू यही बोलने वाला था, मुझे पता था तू यही बोलने वाली थी। दिल धड़कने दो में कबीर आयशा जो है, मुझे उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है। फैमिली के बीच में ना हर बात एक्सप्लेन करनी हो, करनी पड़े, ये जरूरी नहीं है। सिबलिंग कभी कभी चेहरा देखकर पूरा सीन समझ जाते हैं, फेस रीडिंग यू नो। कबीर आयशा ऐसे ही है, वो एक दूसरे की आंखें पढ़ लेते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, चुप रहना है, क्या रिएक्ट करना है, बटन नाइफ देना है कि नहीं देना, यू नो। जिसने देखी है वो कनेक्ट कर लेगा। लेकिन अभी फिलहाल सिंगापुर में कोई तो ऐसा आ रहा है जो ये काम प्रोफेशनली कर रहा है, यू नो, आपको सिबलिंग की जरूरत नहीं है। सुहानी शाह, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब मेंटलिस्ट, वो अपना शो स्पेल बाउंड जो है वो लेकर आ रही हैं संडे 20th सितंबर शाम को 6 बजे क्रेटा आयर्स पब्लिक थिएटर में। शो जो है वो इंग्लिश में होस्ट होगा और इवनिंग होने वाली है ऑल अबाउट माइंड रीडिंग एंड मेंटलिज्म एंड इम्पॉसिबल से लगने वाली जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको महसूस होंगे। देखो फ्राइडे है तो इतना सिंपल तो नहीं कर सकते इसको हम, यू नो। अगर आप इस शो को लाइव देखना चाहते हो, देयर इज अ स्मॉल ट्रिक, एक सवाल है जिसका अगर आपने सही सही जवाब भेज दिया देन हम आपका माइंड रीड कर सकते हैं। आपको नहीं पता सरप्राइज पैकेज मिलेगा आपको। आज का सवाल है उसका बस आप एक सही सही जवाब दे दो मुझे और जवाब भेजना है 9151893 पर। सुहानी शाह के शो का नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्पेल क्रिकेट, ऑप्शन बी है स्पेल बाउंड। मुझे सही जवाब भेजना है आपको 9151893 पर। सुहानी शाह के लाइव शो का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पेल क्रिकेट, ऑप्शन बी स्पेल बाउंड। उसके बाद का मैजिक आप देख लेना 9151893 पर। आप मुझे सही सही जवाब भेज दो, लकी हुए तो आप लाइव शो देख सकते हो, बाकी की कहानी जवाब के बाद।
2: सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते।
1: कहाँ आना है पता है ना, 20 सितंबर को संडे है और शाम को 6 बजे क्रेटा आयर्स पीपल थिएटर में आपको आना है सुहानी शाह का ये मैजिकल शो देखने के लिए।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे इवनिंग है, राखी का दिन है, इनफैक्ट शाम हो रही है और सिबलिंग के साथ एक चीज ऑलमोस्ट गारंटीड होती है, आप दुनिया के लिए कितने भी मिस्टीरियस क्यों ना हो, भाई बहन के सामने मिस्ट्री एक दूसरे की ज्यादा देर टिकती नहीं है, सब पता लग जाता है। आप कहेंगे मैं परफेक्टली फाइन हूँ, आई एम जस्ट ऑल राइट, और तुरंत एक ताना आएगा, हाँ पता है अब बता क्या हुआ। दैट्स इट, दिल धड़कने दो। कबीर एंड आयशा का जो बॉन्ड है इट्स अमेजिंगली सुपर्ब। फैमिली के बीच सब अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, कितनी गड़बड़ है एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, लेकिन सिबलिंग बॉन्ड जो है वो जानता है कि कहाँ गड़बड़ चल रही है, आंखें देख के समझ में आ जाता है कि कुछ तो है ना। सरफेस के नीचे का सीन एवरीबॉडी गेट्स इन दिस फिल्म। सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ, मिस्ट्री की बात अगर आ ही रही है तो एक आपको बात बताती हूँ, बॉलीवुड में एक नई मिस्ट्री जो है वो आ रही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की वन जो आप कह लो। टीजर आया है, इट्स अ फॉरबिडन फॉरेस्ट की दुनिया है, आपको उसमें लेके जाती है ये, एंड जहाँ पे सनसेट के बाद में आपको एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है, अंदर बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें हैं, इट्स वेरी डेंजरस एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आपको हिंट मिलता रहता है। मुझे टीजर की एक बहुत अच्छी बात लगी, सब कुछ पहले ही स्पून फीड नहीं किया गया है, सस्पेंस भी है जो रखा गया है। फ्राइडे का प्लान हो और अगर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हो, आपको सब पता तो क्यों जाओगे, फ्राइडे जो दिन है ना वो ऐसा ही है, परत दर परत खुलने दो दिन को, पूरी आइटिनरी बना के नहीं जाओ, क्या मजा आएगा फ्राइडे का, है ना। इसी नोट पर फिलहाल आर वन को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, एंड दिस आर वाज ऑल अबाउट दिल धड़कने दो का सिबलिंग केमिस्ट्री, है ना, वो रिलेशनशिप जहां पे हम एक अलग ही वर्जन देखते हैं, टीममेट, रियलिटी चेक, साइलेंट सपोर्ट सिस्टम, ये है सिबलिंग इस फिल्म में। उनको पता है सब गलत हो रहा है, पर उनको पता है कि उनको एक दूसरे के साथ रहना है, उनको पता है पूरी दुनिया आपके भाई बहन के खिलाफ हो रही है, उसके खिलाफ हो रही है, इनके खिलाफ हो रही है, मैं अपने भाई या बहन के साथ स्टिक रहूंगा, खड़ा रहूंगा, आई विल स्टे विथ देम नो मैटर व्हाट हैपेंस, दुनिया जाए बाहर में, एंड देन डिफरेंट रोल एस्पेक्ट्स, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट द फिल्म एंड द केमिस्ट्री। शो को आगे बढ़ाएंगे, शो के दूसरे आर में मुलाकात करेंगे, पर उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एंड देन वी विल मूव विद अ न्यू मूवी, टुवर्ड्स अ न्यू मूवी विद अ न्यू केमिस्ट्री, न्यू बॉन्डिंग, और वो फिल्म क्या है, आगे बातें क्या है, वो सब इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड,
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग द वर्ल्ड बॉलीवुड एंटरटेन्ड एनी टाइम एनीवेयर।

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठा था।
2: विशिंग ऑल द सिबलिंग्स वर्ल्ड वाइड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
3: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
4: Hey, hi, welcome back. आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.0, दिस इज मी मुग्धा और आज है फ्राइडे फीवर प्लस राखी का इमोशन। दिस इज द आर टू हमारे शो का, एक्चुअली द आर टू भारी बनाने के लिए दी का दर दर का दी हो जाता है। दी दी दी, वेल इट्स ऑल अबाउट दीदी टुडे एंड भैया टुडे। हमने फर्स्ट आवर में दिल धड़कने दो की बात की थी, कबीर एंड आयशा की केमिस्ट्री, मतलब टीममेट, सेफ स्पेस, फैमिली के ऑस, प्राइवेट मतलब कॉमेंटेटर एंड ऑल। पर अब ये जो सेकेंड आर है ना, यहाँ पे हम थोड़ा इक्वेशन को बदल रहे हैं। वाई? क्योंकि हर भाई बहन की केमिस्ट्री एक जैसी नहीं होती यार, फैमिली में है कि नहीं, हर भाई बहन इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं। कुछ रिलेशनशिप जो होती है उसमें प्यार को ऑफिशियल लैंग्वेज पता है क्या होता है? टांग खींचना, दैट्स सार्कैज़म। सिंगापुर मुग्धा के साथ मस्ती हैंगआउट 2.0 में राखी फ्राइडे का ये जो सेकंड आर है, इसमें हम बात करेंगे उस फिल्म की जहां पर एक बहुत ही डिफरेंट इक्वेशन निकल करके आई भाई बहन की। एंड प्लस इस मूवी ने कई सारे रोल मॉडल सेट किए अलग अलग रिलेशंस को लेकर के, जाने तू या जाने ना, अदिति एंड द ब्रदर अमित, उनका बॉन्ड आपको याद है? दैट छोटा सा चूहा, अमित का एक आइसोलेशन में रहना, चुपचाप सा रहना, अदिति का केयर करना, अमित भी केयर करता था। अमित वो सिबलिंग है जो कम बोलता है, सार्कास्टिक बोलता है लगता है जब बोलेगा तो, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब नोटिस करता है, वो एक ऐसा सिबलिंग है। और अब एक ऐसी कहानी जो सिबलिंग प्रैंक जैसी लगेगी पर एक्चुअली वो है नहीं, वो एक डिलीवरी मिक्सअप है। मेलबर्न में एक मॉम ने अपनी 10 साल की बेटी के लिए एक बुक वीक के लिए मैरी पॉपिंस कॉस्ट्यूम जो है वो ऑर्डर किया। पार्सल खुला, एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड, अंदर से अब निकलेगा, अंदर से क्या निकला? किम जोंग उन कॉस्ट्यूम, राइट। कंपनी के अकॉर्डिंग वेयर हाउस में दो एड्रेस लेबल्स थे एंड एक्सीडेंटली वो स्विच हो गए। कई बार कुछ चीजें किसी वजह से होती हैं, वैसे तो एक्चुअली यूनिवर्स में जो भी होता है किसी कारण से, बट स्टिल। एंड करेक्ट कॉस्ट्यूम एक्सप्रेस डिलीवरी जो है उसको वापस उसे भेजा गया। लेकिन आप इमेजिन करो, घर में आपने सिबलिंग के लिए कोई प्रेजेंट मंगाया हो, आपके घर में कोई सिबलिंग हो, सिंपैथी बाद में आएगी, फोटो पहले खींच के डाल दिया जाएगा कि भाई देखो मैंने क्या कहा था और क्या हुआ। मुझे आदिति और अमित की इक्वेशन का फन पार्ट यही लगता था, सिबलिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे या ना करे, आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ टाइम आर्काइव करके रख लेते हैं आपके भाई बहन, है ना? है ना? आई नो। और वो राखी पर जरूर निकल के आते हैं, अमेजिंग अम्यूजिंग फोटोग्राफ्स पोस्ट होती हैं इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग अ सिबलिंग एक्चुअली, राइट? या

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे की जो प्लान्स है ना उनका अलग ही मजा, सरप्राइज का तो भाई साहब कह नहीं सकते आप। सोने पे सुहागा वाली कहावत सुनी है आपने? स्पेशली वो जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हो, और सिबलिंग रिलेशनशिप में कभी कभी एग्जैक्टली वो हो जाए तो आय हाय हाय मजा ही आ जाता है ना। जाने तो या जाने ना मेना, आदित्य और अमित का जो बॉन्ड है आप बाहर से देखो तो फुल सार्कैज़म है, या फिर आपको लगेगा वो चुप रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो आती है डिस्टेंस है, थोड़ी टांग की, मतलब सब कुछ है। लेकिन एक दो सीन्स ऐसे हैं जहां पे अमित उसे अपना रूम दिखाता है, अपनी फीलिंग्स अदिति के साथ शेयर करता है, एंड सडनली अदिति को रियलाइज होता है कि ये बंदा मुझे शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा समझता है। और अमित उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे लिए कौन सही है और कौन गलत, एंड दिस सेम वाइब एक बहुत ही रियल लाइफ स्टोरी से मैच करती है। अनीता सेख ने बाली ट्रिप पर अपने सन चार्ली की जो नैनी है लिली, उनको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज बिजनेस क्लास अपग्रेड दिया। देखो अब आप ये कह सकते हो कि हाँ हाँ ठीक है, शो ऑफ कर रही है एंड ऑल दैट, कितने लोग करते हैं जरा गिन के मुझे बताओ उंगलियों पे। लिली जो है ना वो फैमिली के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, एंड सरप्राइज जब उन्होंने सुना वो लिटरली हंसने नाचने वाले मोड में आ गई थी। एंड लेटर शी सेड शी इवन क्राइड। ऑफ कोर्स यार, कोई भी खुशी के मारे तो रोएगा ना, दिस इज अ सरप्राइज एवरीबॉडी वांट्स, कहता कोई नहीं पर चाहिए होता सबको, है ना। अनीता का पॉइंट बहुत सिंपल था, मनी अर्न करना अच्छी बात है लेकिन अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ स्पेशल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना वो और भी ज्यादा स्पेशल है। अब मुझे स्टोरी में ना वही अदिति और अमित वाला फील दिखाई देता है, कभी किसी एक का जैसो सडनली आपको बता देता है कि ये इंसान मेरी केयर बहुत पहले से करता था, बस मुझे रियलाइज नहीं हुआ, नोटिस मैं अब कर रही हूं, तरीका अब दिखाई दे रहा है। तो राखी फ्राइडे जो है ना शायद सबसे फन सरप्राइज ये होगा कि एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दो, बस सिबलिंग कुछ ऐसा कर दो सिबलिंग के लिए, कुछ ऐसा कह दो कि आप दो सेकंड के लिए बोलो अच्छा तो इतना बुरा भी नहीं है।
2: यू करते परेशानी
1: क्या सब आ गया, ये ऐसा नहीं बोलना पड़े है ना। आई नो
3: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: What, Chunka?
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: फ्राइडे इवनिंग, आई और भाई बहन के बीच एक और क्लासिक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। वीकेंड पे कहाँ जाना है, वीकेंड पे कहाँ जाना है, तू बता तू बता तू बता। 5 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते, तू कभी प्लान नहीं बनाता, तू कभी प्लान। हो गया, अदिति और अमित का रिश्ता कुछ ऐसा ही है, सार्कैज़म, खिंचाई, लेकिन जेन्युइनली जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो एक दूसरे की दुनिया में वो उसको नोटिस करते हैं और शामिल भी होते हैं। अब आप देखो ना, सिंगापुर में अगर इस वीकेंड आप घर पे गणपति बप्पा लाने की प्लानिंग कर रहे हो, जो कि ऑफकोर्स बहुत सारे घरों में हो रही होगी बिकॉज गणपति इज राउंड द कॉर्नर, एक स्टॉप नोट कर लो, एड्रेस ज्योति गणपति 21 कफ रोड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग साइजेस में बहुत ही ब्यूटीफुल गणपति आइडल्स मिलने वाले हैं, ट्रेडिशनल से लेकर कम ड्रेस्ड, मोर ड्रेस्ड, ऑर्नेट लुक्स। और फैमिली के साथ जब आप जाके आराम से चूज करेंगे ना, तो इस बार के बप्पा आपके घर में किस अंदाज में आएंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स में सिबलिंग टीम वर्क जो है वो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, दोनों में इतना जोश होता है कि मजा ही आ जाता है। ये वाला बेस्ट है, वो कहेगा नहीं वो वाला बेस्ट है, और जब वहां पे खड़े होकर आप इतने गणपति देखेंगे तो जिसने बनाए उसको तो और खुशी होगी कि मैंने इतने अच्छे गणपति बनाए हैं, इतने सारे कि कंफ्यूजन हो गया कि किसको चूज करें और किसको ना करें, है ना। पर देखो, घर तो वही जाएगा जिसके लिए मम्मी कहेंगी हाँ ये बेस्ट है, बट स्टिल वो सिबलिंग फाइट तो होना चाहिए। तो इस गणपति, ज्योति गणपति जो आपके लिए लेकर आए हैं, अमेजिंग ब्यूटीफुल गणपतिज, मेनी डिजाइन, मेनी कलर्स, मेनी वराइटीज, मेनी मुद्रास। गणपति बप्पा तो खैर जैसे भी आएंगे आशीर्वाद ही देंगे आपको मन से लाओ तो, पर उसके लिए आपको जाना है 21 कफ रोड स्पेशली जस्ट फॉर गणपति आइडल्स, ये आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। मस्ती हैंग आउट 2.0 पर मुग्धा के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, करते रहिए बिकॉज ये फ्राइडे वाइब है मेरी जान।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे नाइट पर एक बात बड़ी अच्छी लगती है, पूरा हफ्ता तो भाग दौड़ में निकल जाता है, लेकिन कभी कभी कोई पुरानी कनेक्शन, कोई पुराना प्रॉमिस सडनली याद आता है और आपको लगता है ओ शिट ये तो रही गया, हमें तो यहाँ जाना था, हमें तो ये करना था। होता है ना, रिश्तों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, प्लीज ये बात ध्यान रख लो, जाने तो या जाने ना। आदित्य और अमित का बॉन्ड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है, अमित लाउड नहीं है, वो ओवरली इमोशनल नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है, बट वो अदिति को ऑब्जर्व करता है, उसकी हरकतें देखता है, उसको केयर करता है, और जब जरूरत होती है तो वो बात बोल देता है जो उसे नोटिस करी है और अदिति को समझ में भी नहीं आई होती कभी। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड जो मैंने इस मूवी में देखा, एक रियल लाइफ स्टोरी है जो उसे बहुत अमेजिंगली कनेक्ट करती है, क्वाइट केयर वाली फीलिंग। 27 इयर्स अगो रोनल जो है उन्होंने टीवी पर यिन को डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ काम करते हुए देखा और उनके एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 5000 यूएस डॉलर्स रेज किए, है ना, फंड रेज किया। सैपलिंग्स थे, उन्होंने सैपलिंग्स के लिए रही, उस वक्त उन सैपलिंग्स के साथ 50,000 से ज्यादा ना उन्होंने पेड़ों का पेड़ लगाए और एक फॉरेस्ट क्रिएट किया। आफ्टर 27 ईयर्स ऑनलाइन रिकनेक्ट होने के बाद दोनों अभी हाल ही में बीते कुछ दिन पहले लाइक 23 अगस्त के आसपास इनर मंगोलिया में फाइनली मिले, 27 ईयर्स के बाद, एंड दे केप्ट द कनेक्शन अलाइव। सबसे अच्छी बात पता है क्या इस पूरे कॉन्वर्सेशन, इस पूरे इवेंट की, सपोर्ट हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता है, है ना, कभी एक जेस्चर बहुत आपको छोटा लगता है, बट इयर्स लेटर पता लगता है कि उसका इम्पैक्ट वाज अमेजिंग, बड़ा। और सिबलिंग रिलेशंस में कभी कभी ना वैसा ही होता है, एक्चुअली सिबलिंग रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, ये कोई पोर्ट्रेट मतलब जिसको कहते हैं आप फैमिली, परफेक्ट फैमिली पिक्चर जैसे नहीं होता है ये, रोज आई केयर आई केयर आई केयर ये ना तो कोई बोलता ना, इसको बोलना जरूरी होता है, कभी कभी बस वो एक इंसान होता है जो आपको क्वाइटली सुनता है, समझता है और बस आपके लिए केयर करता है। तो इस राखी ना, ये जो जानी तो या जानी ना का वाइब है ना सिबलिंग वाला, इस बॉन्ड का वो वर्जन आप एक दूसरे को दिखाइए अपने अपने अपने सिबलिंग्स को। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ कि थर्ड आर में जो पिक्चर मैं लेके आ रही हूँ, दैट वाज अनबिलीवेबली अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि ये सिबलिंग बॉन्ड वॉज आउट ऑफ द ब्लूज, कहीं से मैंने सोचा नहीं ऐसा कुछ आ सकता है स्क्रीन पे, बट इट केम।

0: क्या मूवी है, क्या बॉन्ड है और फ्राइडे से कैसे कनेक्ट होता है, ये सब बातें हम करेंगे पर म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड.
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: All for one and one for all. A companion, a friend, a savior. Radio Masti 24/7 wishes all the siblings worldwide a very happy Raksha Bandhan. Josh mein raho.
1: Hangout karenge par thoda hatke. Ye hai Masti Hangout RJ Mugdha ke saath.
2: फ्राइडे नाइट है सिंगापुर और अब राखी स्पेशल का थर्ड एंड द लास्ट आर शुरू हो चुका है द फ्राइडे फीवर और ये फ्लेवर है बहुत डिफरेंट सिबलिंग कंपटीशन एंड द फिल्म इज कपूर एंड सन्स कपूर एंड सन्स के जो राहुल और अर्जुन है उनको देखिए ये दोनों भाई हैं सिबलिंग यूजुअली राखी की अगर हम बात करें तो ये भाई बहन वाला भाई बहन सिबलिंग नहीं है ये भाई भाई वाला सिबलिंग प्यार है प्यार अपनी जगह है लेकिन कंपेरिजन का मीटर परमानेंटली ऑन रहता है और ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हर एक सिबलिंग में होता है उसने क्या किया मैं क्या कर रहा हूँ इसको ज्यादा टेंशन क्यों मिल रहा है सच कहूं सिबलिंग्स के बीच में थोड़ा अनहेल्दी कॉम्पिटिशन या हेल्दी कॉम्पिटिशन ये ना हो तो मजा भी क्या है यार सिबलिंग्स में तो अगर आपके घर में भी कोई सिबलिंग है जो हर बात पे बोलता है मेरे आइडियाज तुमसे बेटर है तो इस बार कह देना ठीक है भाई अच्छी बात है पर प्रूव करो Yes. पर मैं प्रूव कर सकती हूँ कि फिलहाल मेरा आइडिया सबसे बेटर है Why? Mountbatten CCIAEC का जो फेस्टिव बाजार है 2026 का वो आ रहा है संडे ऑन 27th ऑफ सितंबर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक Mountbatten CC इट्स अ मल्टीपर्पज हॉल में हो रहा है ठीक है Mountbatten CC मल्टीपर्पज हॉल में सिर्फ शॉपिंग नहीं है यहाँ पे आपको पता है आप अपना स्टॉल लगा सकते हो बहुत सारी चीजों का आपके पास मौका ये करने का अपैरल फैशन फूड स्नैक्स होम डेकोर गिफ्ट हैंडीक्राफ्ट जो भी आप ऐसा कोई स्मॉल बिजनेस रन करते हो घर पे कुछ करते हो ऐसा जो आपको लगता है कि दुनिया को देखना है अब इसको मुझे आगे बढ़ाना है तो आपका सिबलिंग आपको आइडिया दे चाहे ना दे दिस इज मी हियर आपको आइडिया दे रही हूँ अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट है आपके पास टैलेंट है स्मॉल बिजनेस है तो दिस कुड बी योर संडे टू पुट इट आउट देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दिखाने के लिए कि हेलो दिस इज मी एंड मेरा आइडिया सबसे बेटर है फिर आपका सिबलिंग भी कहेगा हाँ मुझे पता था मैं तो मेरे को ऐसे प्रोवोक कर रहा था मैं कर रही थी ऐसे करते हैं वो आप देखो स्टैंडर्ड टेबल रेट है $80 सिंगापुर डॉलर ठीक है प्रीमियम टेबल रेट है 100 सिंगापुर डॉलर जीएसटी एड ऑन होगा इसमें एंड स्टॉल इंक्वायरीज के लिए एक नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं 8330-2518 मेरा एक सजेशन है सिबलिंग के साथ ना स्टॉल लगा लो यस सिबलिंग के साथ स्टॉल लगा लो एक सेल संभाल ले दूसरा अकाउंट संभाल ले शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि कपूर एंड सन्स का राहुल कौन है और अर्जुन कौन है देखो स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी उसको किसने कैसे इम्प्लीमेंट किया वो इम्पोर्टेंट था राइट और क्या पता आपको आपकी आलिया मिल जाए उसी ऑडिटोरियम में

0: देखो फ्राइडे की प्लानिंग कर लो, वीकेंड पे आइडिया मैंने आपको दे दिया है, फैमिली कॉम्पिटिशन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बदलने का इससे जो बढ़िया मौका है वो आपको नहीं मिलेगा। मुग्धा के साथ मसी हंगा 2.0 आप सुन रहे हो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, दिस इज मुग्धा।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: You know what's the best part of Friday? Same लोग, same city, same weekend, but mood का version is upgraded. कपूर एंड सन्स में कहीं ना इस बात पर देखा जाए तो काफी टिकती है ये पूरी पिक्चर। फैमिली पुरानी होती है, इक्वेशंस पुराने होते हैं, कुछ नए एड ऑन भी होते हैं इक्वेशंस, लेकिन हर जनरेशन उन्हें अपने तरीके से हैंडल करती है। वेरी अनएक्सपेक्टेड रिवलेशंस होते हैं इसमें ना। अभी फिलहाल ओनम पे एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी बात हुई। ओनम अभी हाल ही में बीता है। ओनम वॉज अ फेस्टिवल जो कि इंडिया में बहुत आयत सेलिब्रेट होता है। जो ओनम सेलिब्रेशंस बाहर भी लोगों ने देखे होंगे, वेल ओनम में भी एक अपग्रेड हुआ सॉलिड वाला। कोची के एक मॉल में इस बार महाबली या माबली जिसको कहेंगे, वो अपने ट्रेडिशनल लुक में आए, बिल्कुल ट्रेडिशनल टायर में, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट वर्जन में। चाइनीज रोबोटिक्स फर्म एक है, उन्होंने एआई पावर्ड रोबोट माबली यानी महाबली जो है वो बनाया और विजिटर्स को ग्रीट कर रहे थे वो डांस करके। लोग वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे फुल अटेंशन मिल रहा था इसको। ही वाज डांसिंग सो वेल। ट्रेडिशन ने टेक को बोला है तुआ, पर ड्रेस कोड तो आप उनका होगा। तो दैट वॉज अ कंबाइन एफर्ट, राइट? टेक्नोलॉजी मीट ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशनल कपड़ों में भी बहुत अच्छे से नाच रहा था, यू नो। आप नहीं कह सकते कि ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। मुझे जेन्युइनली बहुत फन लगा। हर चीज को ना मॉडर्न बनाने का मतलब उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना नहीं होता है। कभी कभी प्रेजेंटेशन आपकी नई होती है, इमोशंस आपके पुराने होते हैं, आपका ट्रेडिशन आपके साथ अटैच्ड होता है, जस्ट लाइक सिबलिंग्स। बचपन में हम लड़ते हैं रिमोट के लिए, फ्रिज में रखी चॉकलेट के लिए, एक कप आइसक्रीम के लिए, फिर लड़ते हैं चार्जर्स के लिए। टेक्नोलॉजी बदल गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स का कोर अभी भी सेम है। हम लड़ते हैं पर फिर उसी चार्जर को बारी बारी से यूज करते हैं, है ना? और ये कि फोन में बैठ के पूरी पिक्चर देख डालते हैं। दिस इज व्हाट सिबलिंग फन इज अबाउट, ऑल अबाउट एक्चुअली, है ना? जोश में रहो।
2: Wanna nudge all night? Do you feel alright? Wanna nudge all night?

0: आवाज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अगर हम लाइफ में थोड़े कम सीरियस हो जाते, थोड़े लेस ऑनेस्ट या मोर ऑनेस्ट हो जाते एंड अपने लोगों को वैसे एक्सेप्ट करते जैसे वो है तो दिस इज कपूर एंड सन्स सिबलिंग बॉन्ड। मुझे सबसे ज्यादा हिट ये पॉइंट करता है। राहुल अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बहुत भयंकर तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। फैमिली उसको समझ नहीं पा रही है, वो फैमिली को अपनी बात समझा नहीं पा रहा है ना। रिएक्शंस आर एब्सोल्युटली मेसी। हर रिलेशन कपूर एंड सन्स में बहुत मेसी है, बहुत अनकंफर्टेबल है सब एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट द सिबलिंग्स आर आल्सो नॉट कंफर्टेबल इन ईच अदर स्किन। लेकिन अर्जुन का एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, ही डजंट स्टॉप बीइंग हिज ब्रदर। वो उसे जज करने से पहले एक्सेप्ट करता है और सिबलिंग का मतलब राखी बांधना नहीं होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सिबलिंग रिलेशनशिप में शायद टफेस्ट चीज यही होती है। अगर आप चॉइसेस से उसके अग्री नहीं करोगे, हर सीक्रेट समझ में नहीं आएगा आपको, हर फेज आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा उसका, बट कभी कभी इतना कहना काफी होता है कि तू मेरा भाई है या तू मेरी बहन है, बाकी भाड़ में गई सारी बातें। दिस इज वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द वर्ल्ड एंड योर सिबलिंग इफ यू हैव अ सिबलिंग। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस आई एम सेइंग दैट। बस अब हम फ्राई को ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, फ्राई को ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, फ्राइडे को हम फन डे रहने देंगे, बिकॉज सिबलिंग्स का एक्सेप्टेंस ना बड़ा यूनिक होता है। दुनिया के सामने बोलेंगे आई हैव गॉट योर बैक, राइट, और घर आते कहेंगे तेरी ड्रेसिंग सेंस मैंने पहले ही कहा था, सब हंसेंगे तेरे ऊपर। ऐसा ही होता है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट ब्रो, दिस इज अ फन पार्ट। यही तो ब्यूटी है। प्यार सीरियस हो सकता है रिलेशनशिप का, लेकिन रिलेशनशिप में सिबलिंग वाला प्यार सीरियस नहीं हो सकता। कुछ भी सीरियस नहीं है इनके बीच में। ये राखी फ्राइडे ना मे बी सिबलिंग्स को फिक्स करने का प्रोजेक्ट थोड़ा हम साइड रखते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वियर्ड हैबिट्स, क्रेजी चॉइसेस, बैड जोक्स, फुल पर्सनालिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करें, और आप करते ही हैं, मुझे पता है, मुझे आपको इस पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट, लेग पुलिंग एंड फ्राइडे वन, दैट्स ऑल अबाउट कपूर एंड सन्स, राइट।

0: मिलेंगे एक ब्रेक के बाद. स्टे कनेक्टेड.
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस. एनीटाइम एनीवेयर.

0: गाना बजा दूं।
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: वेल सिंगापुर, बस इस राखी फ्राइडे की हमारी 3R सिबलिंग राइड जो है ऑलमोस्ट अब एंड पर आ चुकी है। 3 फिल्म के बारे में हमने बात करी थी एंड तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग इक्वेशंस वाली थी। दिल धड़कने दो में भाई बहनों का जो फैमिली की ओसेस के बीच में एक दूसरे का टीम बन जाना, पानी में कूद जाना एंड जान की बाजी लगा देना एंड ऑल, चाहे प्यार के लिए एक दूसरे के हो चाहे एक दूसरे के प्यार के लिए हो, है ना, दे सपोर्ट ईच अदर। रियलिटी चेक, एक लुक लुक लुक लुक सब कुछ काम कर रहा था। देन वी मूव टूवर्ड जाने तू या जाने ना, आदित्य नामित का वर्जन बहुत डिफरेंट है ना, सार्कैज़म, आइसोलेशन, चुपचाप वाला भाई बहन का प्यार जो है, एक्सप्रेशन कम है बट केयरफुली जो केयरिंग है वो क्वाइटली चल रही होती है, बैक ऑफ द माइंड सब है। मतलब सिबलिंग आपको इरिटेट भी सबसे ज्यादा करेगा और नोटिस भी वही आपको करेगा बिकॉज ही और शी इज योर सिबलिंग यार, कम ऑन। एंड देन वी मूव टूवर्ड कपूर एंड सन्स, माई फेवरेट। रिलेशनशिप का सबसे मेसी वर्जन इस फिल्म ने दिया था, कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, मारपीट, लड़ाई झगड़े, बिकॉज दे वर ब्रदर्स बॉस, कौन से भाई नहीं लड़ते आपस में, तो सीक्रेट फाइट्स, सीक्रेट्स, और फिर वो मोमेंट ऑफ डिफरेंसेस के बावजूद आप ये कह पाओ तू जैसा है तू मेरा भाई है। एंड दिस इज द रीजन सिबलिंग रिलेशनशिप इतना इंटरेस्टिंग होता है। एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता ही नहीं है किसी भी घर में, कहीं पे हगिंग ज्यादा होती है, कहीं पे किकिंग ज्यादा होती है, पर रोस्टिंग तो ऑलमोस्ट बराबर चलती है। तो रक्षाबंधन का दिन धीरे धीरे धीरे धीरे रैप अप हो रहा है, मैं इस फील को और ज्यादा नहीं खींचने वाली हूँ। सेलिब्रेशन अगर बाकी है तो उसको फ्राइडे मोड में लेकर चलते हैं। अब हम राखी मनाली दिन भर, अब हम फ्राइडे फन इवनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। मेरा शो खत्म हो रहा है, डिनर पेंडिंग है तो जाइए डिनर कर लीजिए, गिफ्ट नहीं है तो जाके गिफ्ट ढूंढ लीजिए, खाना पीना जो बाकी है जाके करो, फोटो पेंडिंग है तो बस आने वाले गाने एंजॉय करते करते अलग अलग अमेजिंग पोजेस में फोटो खिंचा लो, जहाँ पे हर एक भाई अपनी बहन की फोटो खराब करेगा, आई एम फॉर श्योर, है ना। यस, जाते जाते एक छोटा सा थॉट है आप सबके लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर द पीपल ऑफ नेपाल। यू नो वहां जो एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड आया, जिन लोगों ने अपने जान जाने वाले या अपने लव्ड वंस को खोया, वो फैमिलीज जो अभी भी अपने बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, दे आर सर्चिंग फॉर देयर लव्ड वंस स्टिल, हमारी पूरी दिल से सारी प्रेयर्स और संवेदनाएं उनके साथ हैं एंड वी जस्ट विश एंड वॉन्ट कि दे गेट ऑल द स्ट्रेंथ टू हील देमसेल्व्स एंड टू बेयर विद दिस पेन। फ्राइडे को ज्यादा हम हैवी नोट पर नहीं छोड़ेंगे, राखी की मस्ती अभी बाकी है, वीकेंड अभी बाकी है, पूरा सैटरडे संडे अभी बाकी है। दिस इज मी मुग्धा, आप सुन रहे थे मासी हैंगआउट 2.0, रक्षाबंधन प्लस फ्राइडे इवनिंग स्पेशल। अब हम चलते हैं, सिबलिंग को हग करो, रिलेशनशिप उस टाइप का है तो बस मैसेज कर दो और ठीक है तू इतना भी बुरा नहीं है पर मेरा भाई मेरी बहन है, बाय बाय, टेक केयर। ओप्स, ओ मैंने अभी तक गिफ्ट नहीं भेजा है बॉस, यू टेक केयर एंड प्रे फॉर मी टू।

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर जुड़े सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: वो लड़ना झगड़ना,
1: वो रूठना मनाना,
0: याद है टीवी के रिमोट से लेकर मम्मी पापा से डांट पड़वाना। आपस में पंगे लो तो कुछ भी नहीं, लेकिन कोई और उंगली उठाए किसी एक पे तो हम किसी से कम नहीं।
2: Celebrating the priceless bond of siblings. Happy Raksha Bandhan.
3: If weekend was a guy,
4: वो आ गया. देखो वो आ गया.
3: If weekend was a girl, if weekend was a filmy dialogue,
5: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
3: And if weekend was an app,
6: Radio Masti 24/7 live.
7: Radio Masti 24/7 live.
8: Radio Masti 24/7 live.
9: Radio Masti 24/7 live.
3: How to make best of weekends that travel faster than light? Tune into our Masti Weekends on Radio Masti 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti, 24/7 Live.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है।
2: जोश में रहो।
1: रात अकेले है।
0: रात अकेले है तो क्या, हम तो आते

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम

0: अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: रात अकेली है।
0: रात अकेली है तो क्या, हम

भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में।

0: बोले तो चिल्ला तू हिमालय के घर, हम तीन दिन से नहीं है कम दियर।
1: ओए चांद में दिला दू तुझे मैं जमीन, बोल तो जुबा से वो कातिल हसीन।
0: दिल मांगे दिल दे तू,
1: जान मांगे जान दे तू,
0: तेरी अदा पे मैं
1: चीन और जापान दे तू।

खरम्बा संबा नचाता हूँ मैं, प्यार के इशारों पे नाचता हूँ मैं। अरे दुन फिल्मी गानों का राजा हूँ मैं, कम कम बोले

आज मेरे दिल पे ये बद से जरा। ओए चांद में दिला दूं तुझे मैं जमीन, बोल तो जुबान से तो कातिल हसीन।

स्वाद भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।

अभी मौसमों का बदलना बाकी है, ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर सा।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.